0: हजारौं विषयमा तारो बहस नेपाली बहस यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चाउचाउ
1: ग्लोबल आईएमई बैंक सबैका लागि बैंक
2: डिसोम फाइबर नेट।

0: को पैसा सीधे खल्ती वॉलेट मा।
1: नेपाल को कुने पनी बैंक खाता मा वा 45,000 भन्दा बढी IME काउंटर मार्फत
0: आफन्त को हाथ हाथ मा पुर्याउन IME गरौं।
1: 25 वर्ष देखि सारा नेपाली को विश्वास IME गरौं।

WorldLingo festivity offer अब पाउन होस्ट एक वर्ष को 200 Mbps इंटरनेट और नेट टीवी साथ में डुअल बैंड राउटर नोकिया बीकन 1.1 मेश राउटर और नेट टीवी सेट अप बॉक्स मात्र ₹1200 प्रति महीना में शर्तहरू लागू होने छन् छिटो बने गई WorldLingo।

0: ये कौन है?
1: बाप खबर दा।
2: बाप कुल वीडियो है ना? मैंने सॉरी ना अब
0: वीडियो वाले। बाप। मौला। लड़ी चल। हाँ।

क्यों घास वन में आगो लगो जीव जंतु को नाश वन में आगो लगो वन जंगल खाँच वन में हुनी जीव जंतु ने सारे पीर मं फागुन देखि जेठसम आगो लगने डर आपनो

0: सोनहर
1: World Inco Festivity Offer अब पाउंड होस्ट एक वर्ष को 200 Mbps इंटरनेट और नेट टीवी साथ में डुअल बैंड राउटर नोकिया बीकन 1.1 मेश राउटर और नेट टीवी सेटअप बॉक्स मात्र रूप 1200 प्रति महीना में सर्वहरु लागू होने चं छिटो बने गई World Inc.
2: दमोलिया FM 94.2 समुदाय को आवाज

स्वर चन्द्र विश्वकर्मा प्युठानी र जयन्ता कुँवर, शब्द तथा लय सृजना मदन बेलवासे, सीआरबिटी 01600033412, पीआरबिटी 6054021, युटिएल 7732578, उत्पादक तथा वितरक सुपा देउराली म्युजिक प्राली काठमाडौँ, प्रबन्धक यमन खनाल 98।